0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS हिंदी मोबाइल ऑनलाइन और रेडियो पर.
2: SBS हिंदी के दैनिक रेडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है. ये है 9 जून की एक ढलती हुई शाम और आप सभी को वैशाली जैन का प्यार भरा नमस्कार. कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद मस्त होंगे. आज का SBS कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम इस धरती के पूर्वजों कैमरागिल राष्ट्र के लोगों और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं. हम उन सभी आदिवासी और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदर पूर्वक याद करते हैं जिनकी धरती पर यह कार्यक्रम आज सुना जा रहा है. दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बात करेंगे बहुत सारे उन लोगों की जिन्होंने अपने जीवन को ही एक प्रेरणा बना दिया है. और इसीलिए आज मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपके जीवन में कौन सी ऐसी हस्ती है, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा आपको इंस्पायर करते हैं. 04397997667 हमारा नंबर है. लेकिन कार्यक्रम में सबसे पहले प्रस्तुत करूंगी आज के संक्षिप्त समाचार. इसके बाद बात करेंगे एक ऐसे नवयुवक की जो शार्क हमले के बाद अपनी संस्कृति के जरिए अपने सदमे से उबर रहा है. इसके बाद मुलाकात करेंगे मेडल ऑफ ऑस्ट्रेलिया प्राप्तकर्ता उषा किरण चंद्रा से, जिसके बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे कपिल देव से और जानेंगे उनका नया ऑस्ट्रेलिया कनेक्शन. अंत में आपके लिए लेकर के आएंगे भारत से आने वाली गुड न्यूज की खबर फैसल फरीद के साथ. दोस्तों, आज मैंने आपसे इसीलिए पूछा है कि भाई एक ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो आपको बहुत प्रेरणा देते हैं, बहुत इंस्पायर करते हैं. वो इसलिए क्योंकि आज के शो में हम ऐसे ही लोगों से बात करेंगे. तो बताइए मुझे 04397997667 पर. जब तक आप मुझे भेज रहे हैं संदेश, आइए चलते हैं किसकी तरफ, संक्षिप्त समाचार की ओर वैशाली जैन के साथ. आज के संक्षिप्त समाचार वैशाली जैन के साथ. राष्ट्रीय विकलांगता बीमा योजना यानी NDIS में प्रस्तावित बदलावों को लेकर फेडरल सरकार को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. इस विषय पर गठित सेनेट जांच समिति की सार्वजनिक सुनवाई शुरू हो गई है. विकलांगता अधिकार समूहों का कहना है कि उनसे पर्याप्त परामर्श नहीं किया गया और प्रस्तावित कटौतियों से कई प्रतिभागी आवश्यक सहायता से वंचित हो सकते हैं. ग्रीन्स पार्टी के प्रवक्ता जॉर्डन स्टील जॉन ने सुधारों की विस्तृत समीक्षा के लिए जांच अवधि बढ़ाने की मांग की है. वहीं विपक्ष के नेता एंगस टेलर ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि गठबंधन सरकार के प्रस्तावित बदलावों का समर्थन करेगा या नहीं. फेडरल बजट में अनुमानित बचत का एक बड़ा हिस्सा NDIS खर्च में कटौती पर आधारित है और सरकार संसद में शीतकालीन अवकाश से पहले इस विधेयक को पारित कराना चाहती है. इस बीच गठबंधन ने संकेत दिया है कि वे जांच अवधि बढ़ाने के मुद्दे पर ग्रीन्स के साथ समझौते के लिए तैयार हो सकते हैं. शैडो NDIS मंत्री मेलिसा मैकिंटोश का कहना है कि गठबंधन ने इस जांच की मांग के लिए कड़ा संघर्ष किया था. वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री डॉन फारेल ने अमेरिका के उस दावे को खारिज किया है जिसमें जुलाई से लागू होने वाली प्रस्तावित 12.5% शुल्क को मॉडर्न स्लेवरी संबंधित चिंताओं से जोड़ा गया है. ये प्रस्तावित अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रियर ने उस जांच के तहत रखा है जिसमें वॉशिंगटन ने 60 देशों पर कथित अनुचित व्यापारिक प्रथाओं का आरोप लगाया. EY के एक आकलन के अनुसार इन शुल्कों से ऑस्ट्रेलिया के निर्यातकों पर हर साल लगभग $1.6 अरब का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है. अंतिम फैसला आने में अभी कुछ सप्ताह बाकी हैं. इस बीच फारेल ने बताया कि पिछले सप्ताह पेरिस में उनकी मुलाकात अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ग्रियर से हुई थी. वहीं विपक्ष के नेता एंगस टेलर का कहना है कि यदि गठबंधन सरकार सत्ता में आती है तो वे आयकर में कटौती करेगी और आवास आपूर्ति बढ़ाएगी. उनका आरोप है कि लेबर सरकार की नीतियों के कारण ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए घर खरीदना और कठिन हो गया है. न्यू साउथ वेल्स में एक आवासीय परियोजना स्थल पर बोलते हुए एंगस टेलर ने कहा कि अधिक प्रवासन, महंगाई और टैक्स ने घरों की सामर्थ्य से जुड़ी चुनौतियों को बढ़ा दिया है. उन्होंने ये भी दावा किया कि सरकारी नियमों और प्रक्रियाओं के कारण निर्माण लागत बढ़ रही है और नए आवासीय प्रोजेक्ट्स की रफ्तार धीमी पड़ रही है. और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार. न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन में तेज तूफानी हवाओं और ऊंची समुद्री लहरों के कारण कुछ इलाकों में आपातकाल घोषित कर दिया गया है. वेलिंगटन सिटी काउंसिल ने लोगों से अपील की है कि जो निवासी निकासी क्षेत्र में हैं और अभी तक अपने घर नहीं छोड़ पाए हैं वे सुरक्षित स्थानों पर ही रहें. खराब मौसम के चलते न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीपों के बीच चलने वाली फेरी सेवाएं भी रद्द कर दी गई हैं। मौसम विभाग ने शहर के दक्षिण तट पर 9 मीटर तक ऊंची लहरों की चेतावनी दी है। वहीं लोगों को समुद्री तट की ओर जाने से रोकने के लिए पुलिस ने आसपास की सड़कों पर बैरिकेड्स लगा दिए हैं। और अंत में खबरें भारत से। भारत में पश्चिम बंगाल में चुनावी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पार्टी में बगावत तेज हो गई है और रिपोर्टों के मुताबिक अब तक 58 विधायक और करीब 20 सांसद नेतृत्व के खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि बागी सांसदों का एक समूह एनडीए को समर्थन देने की तैयारी में है। वहीं कोलकाता नगर निगम में भी टीएमसी को झटका लगा है, जहां मेयर फिरहाद हकीम के इस्तीफे के बाद प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है। इस बीच ममता बैनर्जी ने पार्टी की कई समितियां भंग कर दी हैं और हालात की समीक्षा की बात कही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि टीएमसी के सामने अब संगठन को एकजुट रखने की बड़ी चुनौती है। इसी के साथ 9 जून 2026 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं। दोस्तों, संक्षिप्त समाचार के बाद अब आइए चर्चा करते हैं कि किस तरह से संस्कृति और भूमि से आपका जुड़ाव कई बार सदमों से उबरने में बहुत बड़ी सहायता कर सकता है। आज चर्चा कर रहे हैं टॉरेस स्ट्रेट के किशोर सैमुअल नाई की, जिनके लिए ये जुड़ाव शार्क के अब तक के रिकॉर्डेड सबसे ज्यादा घातक हमलों में से एक हमले से उबरने में सहायता कर रहा है। क्या है ये पूरी कहानी, किस तरीके का रहा है ये हमला और क्या कर रहे हैं सैमुअल नाई, जो 15 साल के हैं कुल जमा में, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। पिछले वर्ष क्वींसलैंड के सुदूर उत्तरी क्षेत्र में एक किशोर पर शार्क ने हमला कर दिया था। कई सर्जरी और अस्पताल में महीनों बिताने के बाद उन्होंने असाधारण वापसी की है। एसबीएस की टीम टॉरेस स्ट्रेट के थर्सडे आइलैंड पहुंची, जहां सैमुअल नाई अपनी धरती और संस्कृति से फिर जुड़कर उपचार और पुनर्वास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ वृषाली जैन और आइए सुनते हैं इस मार्मिक कहानी को आज और विस्तार से। टॉरेस स्ट्रेट के वाइबन या थर्सडे आइलैंड के सुनहरे समुद्र तट पर 7 लड़के एक लंबे पारंपरिक ढोल की थाप पर नृत्य कर रहे हैं। इनमें 15 वर्षीय सैमुअल नाई भी शामिल हैं, जो हाथ में शंखनुमा ट्रम्पेट शेल लिए हुए हैं। ये उनकी धरती और समुद्र से गहरे जुड़ाव का प्रतीक है। 7 महीने पहले सैम की जिंदगी उस समय पूरी तरह से बदल गई जब घाट के पास तैरते हुए उन पर शार्क ने हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद सैम लगभग 20 मीटर तैरकर किनारे तक पहुंचे और अपने दोस्तों से मदद बुलाने को कहा। उनकी चोट इतनी भयावह थी कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उनके शरीर का बायां हिस्सा ही गायब हो गया हो। सौभाग्य से इतने गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद भी कोई महत्वपूर्ण अंग क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। इस किशोर ने अस्पताल में 4 महीने बिताए और इस दौरान 24 सर्जरी करानी पड़ी। जो इलाइफू सैम के सांस्कृतिक नृत्य प्रशिक्षक हैं।
3: We had to fly away. I was in

0: ready to go over to Japan to dance over there. And on the way back, we heard about it. Yeah, it was a sad time for us. We didn't know what was happening and stuff. Then it worked out. He's back here with us. And I think that's amazing to see that of such a big event like that.
1: Joy Laifu आइलैंड स्टार्स नामक एक समूह का संचालन करते हैं जो नृत्य गीत और कहानी कथन के माध्यम से टॉरस स्ट्रेट की संस्कृति को जीवंत बनाए रख रहा है। ये पहल लड़कों को अपनी सांस्कृतिक विरासत पारंपरिक टोटमों और भाषा से दोबारा जुड़ने का अवसर प्रदान करती है।
0: And that's why we do it because it's a better understanding of what's out there and what you can utilize and what you pass down to your survival up in the Torres Strait and utilizing that to go down south. So that's very important for us to capture all our culture because it's our identity. Our language is our identity. Our stories is our identity. We lose that. We don't have no identity. So actually practicing it and implementing it into our everyday life.
1: शार्क हमले से करीब 6 महीने पहले ही सैम इस समूह से जुड़े थे और इसके नए सदस्यों में से एक थे। मार्च में अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वे अपने घर लौट आए।
0: Within 2 days, he was at our first dance training back here, engaging with us, and wanted to continue his practice and culture. And so someone to go through that kind of experience and within 2 days of training come back and want to learn about a culture, then performing 2 weeks later. So that's showing you how a young person is really dedicated to know about his culture. So an event like that, that happens, you know, people are rehabilitating themselves by seeing a shrink and stuff. He uses his culture to heal him. Where he comes from, his ancestors to help him through his path.
2: So I know my background, where I come from, my tribe.
1: Townsville University अस्पताल के डॉक्टरों ने सैम के जीवित बचने को असाधारण बताया है. अस्पताल के सर्जन डॉक्टर ब्रेंडन ओकोनर का कहना है कि ऑस्ट्रेलियन शार्क इंसिडेंट डेटाबेस से परामर्श करने के बाद उन्हें लगता है कि ये संभवतः शार्क हमले से हुई सबसे गंभीर चोटों में से एक है जिससे कोई इंसान जीवित बच पाया हो। डॉक्टर ओकोनर के अनुसार सैम की चोटें जानलेवा साबित होने से महज कुछ मिलीमीटर दूर थीं। हमले में उनके पेट के बाएं हिस्से से बड़ी मात्रा में टिश्यू, मांसपेशियां, फैट और त्वचा नष्ट हो गई थी। सैम के लिए इस घटना ने समुद्र के साथ उनके रिश्ते की भी परीक्षा ली है। हमले के बाद से वे अब तक पानी में नहीं उतर पाए हैं। हालांकि वे अपने पारंपरिक टोटमों के बारे में सीख रहे हैं। अबोरिजिनल संस्कृति में टोटम एक पवित्र प्रतीक होता है जो किसी पशु, पौधे या प्रकृति के अन्य तत्व के रूप में व्यक्ति और समुदाय को उनके पूर्वजों, भूमि और आध्यात्मिक परंपराओं से जोड़ता है। सैम समुद्री भूमि यानी सी कंट्री से अपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंध को और गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं।
2: My totem is the crocodile, the shark, and the turtle, green turtle.
1: सैम का परिवार कहता है कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ वही उनकी पहचान नहीं बनना चाहिए। उनके अनुसार शार्क हमला सैम की कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं।
2: I taught me to like when you go diving, you have to go diving at low tide.
1: और सबसे अहम बात यह है कि सैम आज भी वह काम कर पा रहे हैं जिनसे उन्हें सबसे ज्यादा लगाव है।
0: Why have to dance hard?
2: So you feel good when you dance.
1: रिपोर्टर जॉश वैन स्टेडन पुलित्ज़र सेंटर की सहायता से थर्सडे आयरलैंड की यात्रा संपन्न कर सके। SBS न्यूज की इस खबर को SBS हिंदी से आपके लिए प्रस्तुत किया वृषाली जैन ने। और इस अंश के बाद कार्यक्रम में वक्त हो चला है पहले अंतराल का। अंतराल के उस पार करेंगे चर्चा OAM प्राप्तकर्ता उषा किरण चंद्रा से, लेकिन और भी बहुत कुछ होगा कार्यक्रम में। और आज मैंने आपसे ये पूछा है कि भाई एक कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको हमेशा इंस्पायर करते हैं। 04397997667 हमारा नंबर है, जरूर मुझे बताइएगा। आज बहुत सारी चर्चाएं हैं लेकिन उनका एक कॉमन थ्रेड अगर हम कह सकते हैं, एक कॉमन थीम कह सकते हैं, तो वो लोग जिन्होंने चुनौतियों के आगे हार नहीं मानी। तो बताइए मुझे चुनौतियों से हार ना मानने के लिए आपको कौन प्रेरित करता है। नंबर मैं बता चुकी हूँ, एक छोटे से ब्रेक पर जा रही हूँ, जल्दी जल्दी से वापस आती हूँ। आप अपने संदेश जारी रखिएगा।
3: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
6: Starting a new life in Australia isn't easy.
7: A lot of companies have rejected me.
8: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
6: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
1: ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है SBS हिंदी पर. आप सुन रहे हैं वृशाली को और अब आइए चर्चा करते हैं इस साल के किंग बर्थडे ऑनर्स की. भाई बहुत सारे भारतीय ऑस्ट्रेलियाइयों को इस साल हमारे किंग्स बर्थडे ऑनर्स की लिस्ट में शामिल किया गया है और ऐसा ही एक नाम है उषा किरण चंद्रा का भी, जिन्हें समुदाय की सेवा के लिए OAM से सम्मानित किया गया है. उषा चंद्रा का ऑस्ट्रेलियाई सफर कैसे शुरू हुआ और आज भी ऑस्ट्रेलिया में चल रहे माइग्रेशन विवाद को किस नजरिए से देखते हैं, आइए सुनते हैं नताशा कॉल के साथ हुई उनकी इस बातचीत में.
9: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं नताशा कॉल SBS हिंदी टीम से. तो आज हम जुड़ रहे हैं एक बहुत ही खास मेहमान से जिन्हें इस साल किंग्स बर्थडे ऑनर्स की लिस्ट में शामिल किया गया है. किंग्स बर्थडे ऑनर्स 2026 में सम्मानित किए गए लोग उन ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने वर्षों नहीं बल्कि दशकों तक अपने समुदायों की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. इन लोगों के प्रयासों ने समुदाय को मजबूत बनाने, भाषाओं और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने या शिक्षा को बढ़ावा देने और सुशासन को सशक्त करने में अहम भूमिका निभाई है. हर वर्ष की तरह इस बार भी ऑस्ट्रेलिया सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों और पृष्ठभूमियों से जुड़े उन लोगों को सम्मानित किया है जिनके कार्यों ने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में योगदान दिया है. इस सूची में भारतीय समुदाय के कई सदस्य भी शामिल हैं जिन्होंने अपने समर्पण और सेवा के माध्यम से एक छाप छोड़ी है. इन्हीं सम्मानित व्यक्तियों में क्वींसलैंड की उषा किरण चंद्रा का नाम भी शामिल किया गया है. उन्हें राज्य में भारतीय समुदाय के लिए उनके लंबे समय से किए जा रहे योगदान और सेवाओं के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मेडल प्रदान किया गया है. तो आइए जुड़ते हैं उषा किरण चंद्रा से. SBS हिंदी प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है उषा जी.
10: थैंक यू
9: उषा जी. इस साल आपको किंग्स बर्थडे ऑनर्स लिस्ट में शामिल किया गया है, कैसा लग रहा है आपको?
10: मेरे को अपना नाम सुन के बहुत अजीब लग रहा है कि अब हाँ कि अब बहुत आई एम वेरी प्राउड कि हाँ कि मेरा नाम भी उसमें शामिल हो गया है और मुझे बहुत खुशी हो रही है. पहले तो मैं अपने माता पिता को धन्यवाद करती हूँ और फिर प्रभु जी को धन्यवाद करती हूँ और जितना पीपल मेरे को सपोर्ट किए. ये मेरा अवार्ड ही नहीं है, सारे जनता की अवार्ड है. यहाँ जो क्वींसलैंड में बसे हुए हैं सभी का सहायता से मुझे ये अवार्ड मिला है.
9: उषा जी हमें बताएं कि आपका ऑस्ट्रेलिया का सफर कैसे शुरू हुआ, आप कब आई यहाँ पर और किस प्रकार आप कम्युनिटीज के साथ जुड़ी और क्या क्या

0: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo Internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
1: की है लेकिन आप वापस भारत गईं।
2: जी जी, मैं गई अपना स्टडीज करने और वहाँ का सभ्यता संस्कार भी मुझे सीखना था। थोड़ा थोड़ा सा हिंदी भी मैं बोल लेती हूँ।
1: अच्छा।
2: गुजराती भी बोल लेती हूँ, बंगाली भी थोड़ा सा बोल लेती हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा कुछ सभी भाषा। पंजाबी तो बहुत अच्छा से मैं मुझे समझ में आती है, पहले तो बहुत अच्छा से बोल भी लेती थी। अभी
1: जी।
2: मेरे पंजाबी क्लाइंट्स बहुत है यहाँ,
1: अच्छा।
2: इंडियन क्लाइंट्स, तो गुजराती में कोई बात करता तो मैं गुजराती भी अंडरस्टैंड करती हूँ। फिर मैं फिजी गई, वहां से टीचिंग करके फिर ऑस्ट्रेलिया आ गई।
1: और जब आप ऑस्ट्रेलिया पहुंची तो यहाँ किस प्रकार की आपको कठिनाइयां झेलनी पड़ी या चैलेंजेस थे जो आपके सामने आए जब आपने यहाँ पे शुरुआत की?
2: चैलेंजेस तो बहुत था। जब मैंने रियल स्टेट शुरू किया 1989 में, वहां हमारे कलर्ड पीपल कोई नहीं थे, सब व्हाइट पीपल थे। जहां मैं फर्स्ट अपना जॉब शुरू किया,
1: अच्छा।
2: बहुत अच्छा, बहुत मेरे मेरे को बहुत अच्छा से स्वागत किया। जो मेरा बॉस था उसने मेरे को ट्रेनिंग किया।
1: अच्छा
2: मैं वर्क की विद 9 व्हाइट मैन, ओनली
1: अच्छा
2: फीमेल विद कलर्ड स्किन, बट आई गोट अ लॉट ऑफ सपोर्ट। सपोर्ट मेरे को बहुत लोग दिया।
1: जी।
2: एंड वहां से फिर मैंने अपना 93 में मैंने खुद का अपना ऑफिस शुरू किया। मैं एक और एलचेहू का ग्रुप के साथ भी काम की, जस्ट टू सी कि कैसे ये लोग करते हैं, कैसे फ्रेंचाइज ग्रुप वर्क करता है। देन आई डिड 610 आवर्स ऑफ टाइफ कॉलेज एज वेल एट नाइट।
1: अच्छा
2: दो बच्चों का, छोटे छोटे मेरे दो बच्चे थे,
1: जी।
2: तो मैंने अपना स्टडीज, मेरे हस्बैंड भी अपना स्टडीज फिर टाइफ में किया उसने भी,
1: जी
2: तो हमने हमने दो हम दोनों शाम को एवरी डे टाइफ कॉलेज में ही बैठते थे।
1: अच्छा उषा जी, ये बताइए कि जब किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को यह सम्मान दिया जाता है, क्या मायने होते हैं इस सम्मान के? आपके आपके लिए ये इस सम्मान का क्या मायने है, क्या अर्थ है? और आप बता रही थी कि आपके हस्बैंड को भी ये सम्मान 2021 में दिया गया, तो क्या मायने हैं इस सम्मान के आपके लिए, आप दोनों के लिए?
2: I feel very proud, but with pride comes a lot of hard work as well.
1: जी।
2: So मुझे तो ऐसे लग रहा है कि हाँ, I'm proud, but I've got a long way to go. अभी बहुत काम करना है हमें।
1: जी। और
2: ऑल ऑफ ऑस्ट्रेलिया मेडल तो बहुत अच्छी बात है।
1: जी।
2: सभी लोग को नहीं मिलता है सम्मान, तो बहुत बड़ा सम्मान मेरे को मिला है। बट मेरे को ये भी करना है कि और हमारे जो लोग हैं उनको और कैसे हम बढ़ावा दें, आगे कैसे उनको गाइड करें।
1: अच्छा, आप जैसा बता रही हैं कि जब आप आई थी यहाँ पर शुरू शुरू में और जब आपने अपना जॉब शुरू किया था, आपको काफी सपोर्ट मिला लोगों से, ऑस्ट्रेलियाई लोगों से, लेकिन आज जब आप एंटी इमिग्रेशन भावनाएं आसपास देखती हैं तो आपको कैसा महसूस होता है?
2: देखो, आजकल के थोड़ा परिवर्तन चेंज हुआ यहाँ के लोग का, बिकॉज हमारे जो लोग आते हैं तो अगर घुल मिल जाए सब उसमें तो बहुत अच्छी बात है।
1: जी।
2: बट काफी लोग अब तो घुल मिल गए हैं, बट इनिशियली जब हमारे स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे थे तो उस समय काफी प्रॉब्लम्स होती थी, बट अब तो काफी लोग दे हैव एक्सेप्टेड कि हाँ,
1: अच्छा।
2: इंडियंस आर हियर, दे आर बिल्डिंग एंड लॉट ऑफ पीपल। आई मीन, वी हैव गॉट मिनिस्टर्स, वी हैव गॉट काउंसलर्स, वी हैव गॉट लॉट ऑफ हाई प्रोफाइल बिजनेस पीपल।
1: जी
2: सब इंडियन ओरिजिन के हैं और मल्टीकल्चरल ओरिजिनल ओरिजिन से है।
1: जी जी
2: तो मुझे तो लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने हमें सबको बहुत ही अच्छा टाइम दिया है, हमें अपना देश दिया है कि हम भी कुछ करें, और देश के लिए जहां पे आप रहते हो उस देश के लिए भी करना चाहिए।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी आज हमसे जुड़ने के लिए, और एक बार फिर हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां ये सम्मान पाने के लिए।

और क्योंकि इतनी प्यारी बातचीत रही है तो ये गाना तो बनता ही है। और इस गीत के साथ मेरे पास सुरेंद्र जी का संदेश आया है जो बता रहे हैं कि उनके जीवन में प्रेरणा का स्रोत कौन है। और वो कहते हैं, माय वाइफ प्रीतपाल कौर चावला इंस्पायर्स मी एवरी टाइम। आज मैंने आपसे पूछा है कि वो कौन है जो आपको हमेशा प्रेरित करते हैं। 04397997 हमारा नंबर है, जरूर बताइएगा।

0: और इसी के साथ समय एक छोटे से अंतराल का, अंतराल के उस पार आपकी मुलाकात करवाएंगे कपिल देव से और जानेंगे कि क्या है उनका नया ऑस्ट्रेलिया कनेक्शन। बने रहिए SBS हिंदी पर और मुझे जरूर बताइएगा कि क्या है वो चीज या कौन है वो व्यक्ति जो आपको हमेशा इंस्पायर करते हैं, हमेशा ऐसा लगता है कैसे कर लेते हैं ये। तो 04397997667 हमारा नंबर है, जरूर भेजिएगा संदेश। एक छोटा सा अंतराल, फिर होती हूँ हाजिर, कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा SBS हिंदी पर।
1: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice,

0: Con Spectrum TV no me pierdo ni un partido, porque tengo todas mis aplicaciones favoritas juntas. ¡Golazo! Más TV en vivo y todos los canales de deportes. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! Todo en un mismo lugar, sin pagar extra. ¡Canasta! Un plan, un precio, un lugar y todos sus deportes. Visita spectrum.com/toda tu TV para más información.
1: Hambikar hi lenge, you know, ya inhone jis tarike se kiya hai, kaash ki hum is tarike se kar pate. 0439799767 hamara number hai. Aur isi kadi mein aaj ek aur charcha karte hain bhartiya cricket diggaj Kapil Dev ki. Australia federal sarkar ke sahyog se Kapil Dev ki sanstha khushi भारत में शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए मनोबल इनिशिएटिव लेकर के आ रही है. ऑस्ट्रेलिया का ये कनेक्शन कैसे बैठा, कैसे फेडरल सरकार ने उनकी मदद करने की कोशिश की, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रिचर्ड माल्स इस इनिशिएटिव की शुरुआत के लिए दिल्ली पहुंचे तो क्या कुछ हुआ, आइए कपिल देव की जबानी ही सुनते हैं कि क्या है मनोबल, किस तरीके से ऑस्ट्रेलियाई सरकार इसमें जुड़ी और क्या कुछ आगे होने वाला है.
2: जी, आई एडमायर ऑस्ट्रेलिया क्योंकि उनका सबसे बड़ा है कि वो खेलने में बहुत बड़ी रुचि लेते हैं और जो भी काम करते हैं वो इस तरह करते हैं कि इसको खेल की तरह देखा जाए.
1: क्यों कहा कपिल देव ने ऐसा? ऐसे तो ऑस्ट्रेलिया और कपिल देव का नाता बहुत पुराना है, लेकिन किस नई वजह से जुड़ रहे हैं कपिल देव और ऑस्ट्रेलिया एक साथ, इस पॉडकास्ट में आज जानेंगे यही सब.
3: तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय क्रिकेट के दिग्गज कप्तान कपिल देव. लेकिन आज हम लोग क्रिकेट पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे विषय पर जिससे आप केवल क्रिकेटर नहीं कुछ भी बन सकते हैं, क्योंकि कुछ भी बनने के लिए आपको आवश्यकता होती है अपने गुरु की. और ऑस्ट्रेलिया की सरकार के साथ किस तरीके से कपिल देव की एनजीओ ने एक साझेदारी करी है और किस तरीके से ये भारत में शिक्षकों की मदद करने वाला है, हम चर्चा इस पर कर रहे हैं. तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर SBS हिंदी पर.
2: थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, मेहरबानी.
3: सबसे पहले तो कपिल जी हमको ये बताइए कि ये मनोबल इनिशिएटिव क्या है और क्यों आपने इसको बढ़ावा दिया ऑस्ट्रेलियन सरकार के साथ ही क्यों?
2: नो, हम तो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कौन चैरिटी की हेल्प कर सकता है. एंड यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट आगे बढ़ के आई तो उसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ. खुशी ऑर्गेनाइजेशन हमने स्टार्ट की थी 20 साल पहले. मैं जो उसका एक समय प्रेजिडेंट था, अभी मैं पेट्रन हूँ, उसका पार्ट हूँ. खुशी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर हम बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं और अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते हैं और उसके साथ उनकी सेहत का ख्याल रखते हैं. आई थिंक इनिशिएटिव हमारे ऑफिस ने लिया था और अच्छा लगा कि ऑस्ट्रेलियन सरकार हाई कमिश्नर ने यहाँ पर बड़ा मेहनत की हमारे साथ और इस मुकाम पर पहुंचे कि आज ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इज हेल्पिंग अस आउट फाइनेंशियली. वैसे भी
3: जी, तो हम अपने श्रोताओं को बताते चले कि खुशी यानी किनशिप फॉर ह्यूमैनिटेरियन सोशल एंड होलिस्टिक इंटरवेंशन इन इंडिया अब जो ये इनिशिएटिव लेकर के आ रही है इसका नाम है मनोबल, जो शिक्षकों के भी मेंटल हेल्थ और वेलबींग पर फोकस कर रहा है. तो कपिल जी, क्यों शिक्षकों को आज के समय में इस सपोर्ट की या इस रिकॉग्निशन की आवश्यकता है?
2: जी, आज के दौर पर जरूरत है, डेफिनेटली है. शायद आज से 15-20 साल पहले हम कभी मेंटल हेल्थ के बारे में चर्चा नहीं करते थे, आज जरूरत है क्योंकि दुनिया एक तो बहुत छोटी हो गई है ये मोबाइल के आने से, इंटरनेट के आने से. उसके बाद लोगों को नॉलेज है लेकिन उनके पास बहुत फ्री टाइम भी हो जाता है कि क्या करना चाहिए. तो ये सब तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए यही कह सकते हैं कि आज मेंटल हेल्थ is a very strong part.
3: हम कई बार ये नोटिस करते हैं कि खासकर शिक्षकों के मामले में कि वो अपनी वेलबींग को या अपनी मेंटल हेल्थ को पीछे रख करके दूसरों की सहायता करते हैं. ये एक काफी प्रेशर वाला जॉब है, आप खुद एक पब्लिक लाइफ फिगर हैं, लंबे समय तक एक ऐसे करियर में रहे हैं जहाँ पर बहुत प्रेशर रहा है.

0: आप कहेंगे इन एजुकेटर्स से कि किस तरीके से अपने स्ट्रेस और बर्नआउट को मैनेज कर सकते हैं?
1: जी, एक तो आजकल के युवा को हम बिजी रखना चाहते हैं, उनको कोई ना कोई काम करना चाहिए। जब बहुत टाइम फ्री होता है तो उनका दिमाग बहुत तरफ चला जाता है। तो इसलिए हमारा जो मेन मुद्दा ये है कि हम इन बच्चों को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो खेलों में हो या पढ़ाई में हो या साइंस में हो, क्योंकि इनके पास बहुत अच्छा सोच है, युवा सोच है, लेकिन उसके बाद उनको डायरेक्शन दिखाने की बहुत जरूरत है आज।
0: जी, तो आपके क्रिकेट करियर के दौरान कपिल जी, कौन से आपके ऐसे टीचर्स और मेंटर्स रहे हैं जिनको आप आज भी सोचते हैं तो आपके लिए प्रेरणा का स्रोत रहते हैं कि वो जिस तरीके से फंक्शन करते थे वो आज के दौर में देखने को नहीं मिल रहा है?
1: आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम पता नहीं देखने को मिलता है कि नहीं, मैं क्रिकेट छोड़ चुका हूँ। हाँ, आपके सीनियर प्लेयर बहुत बड़े मेंटोर होते हैं कि उनसे आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो इसलिए मेरा मानना तो यही है कि अगर आप अपने सीनियर से या जिनके पास एक्सपीरियंस है उनसे बैठ के समय बिताएं और सीखने की कोशिश करें। ये मैं मानता हूँ युवा आज बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, लेकिन उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है जो सीनियर्स के पास है। तो मेरे लिए तो सीनियर ही गुरु हैं, उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो।
0: 1983 वर्ल्ड कप की विनिंग टीम के कप्तान के तौर पर टीम वर्क को लेकर, कॉन्फिडेंस को लेकर, या फिर मुश्किल सिचुएशन से आगे बढ़ने को लेकर के आपके अपने क्या लेसन रहे जो आपको लगता है कि आज की रोज की जिंदगी में भी उतने ही काम आते हैं?
1: नेवर गिव अप, आप हार नहीं मानने, यही सबसे बड़ी सीख मेरे को मिली अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से या अपने बड़ों से, कि आप कभी हार नहीं माननी। हार कमजोर आदमी मानता है, शायद आपको उस मुकाम तक ना पहुंच पाओ जहां पर आप सोचते हो, लेकिन अगर आप चलना शुरू करोगे तो एक ना एक मुकाम तक जरूर पहुंचोगे। और कमरे में बैठ के सिर्फ बातें करना और सोचते रहना और शुरू नहीं करना, वो कहते हैं ना जिंदगी में पहला स्टेप सबसे मुश्किल है और सबसे आसान है। इसलिए आसान है कि लेना बड़ा आसान है, लेकिन जब एक बार जर्नी शुरू हो जाती है, सफर शुरू हो जाता है, फिर आदमी किसी ना किसी मुकाम पर जरूर पहुंच जाता है।
0: कपिल जी, आपने मनोबल इनिशिएटिव को लॉन्च किया ऑस्ट्रेलिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रिचर्ड माल्स के साथ। आपको क्या लगता है इंटरनेशनल पार्टनरशिप इस तरीके के ग्रोथ इनिशिएटिव के लिए कितने जरूरी हैं, और ऑस्ट्रेलिया की कौन सी ऐसी सोच है जो आपको लगता है इंडिया के शिक्षकों को, खासकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश में जहाँ पर आप ये इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं, वहाँ मदद करेगी?
1: जी, आई एडमायर ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि उनका सबसे बड़ा है कि वो खेलने में बहुत बड़ी रुचि लेते हैं और जो भी काम करते हैं वो इस तरह करते हैं कि इसको खेल की तरह देखा जाए। तो इसीलिए ऑस्ट्रेलियन खेल, चाहे कोई भी खेल हो, बहुत बड़ा है, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी ये सीख सके कि खेलने में बहुत दम है। ये चीज आज नहीं, पिछले 40 साल से मैं एडमायर करता हूँ ऑस्ट्रेलियन के, ऑस्ट्रेलियन थॉट प्रोसेस की, सोच की, क्योंकि उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और हमारी यंग कंट्री है, हाँ हमारा इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन यंग कंट्री है। देखा जाए कि आजादी मिले हुए बस 70-80 साल हुए हैं और 70-80 साल में हमने बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन नई जनरेशन जो हमारे पास है वो बहुत कुछ और भी कर सकती है। तो उनको सही डायरेक्शन पे लाना बहुत जरूरी है, और अगर दूसरे लोगों की सोच हमारे बच्चों को समझ आए तो वो उसका फायदा ही हो सकता है, नुकसान नहीं हो सकता।
0: और इंडियन डायस्पोरा दुनिया भर से सर एजुकेशन को लेकर के और सामुदायिक विकास यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट को लेकर के बहुत एंगेज है, तो ऐसे में जो डायस्पोरा है, जो ओवरसीज इंडियंस हैं, वो किस तरीके से मदद कर सकते हैं भारत में सामुदायिक विकास के लिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए?
1: आई थिंक यही, जैसे हम खुशी हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर कोई हेल्प कर सकता है, इंडियन जो है अब्रॉड रहते हैं वो बहुत सफल हैं, उन्होंने बहुत कामयाबी देखी है, अगर कभी कभी मन में हो कि हम वापस अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं तो अच्छा लगता है कि उनकी सोच भी, जब भी हम कुछ लोगों को मिलते हैं, जब हम ट्रेवल करते हैं बाहर, तो उनको कुछ ना कुछ हिंदुस्तान के लिए करना अच्छा लगता है, क्योंकि एक बार आप कमा लेते हो तो यू हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी, और जो इंसान सोसाइटी को वापस करता है आई थिंक वो अपने आप में एक बड़ा बन जाता है।

0: आप प्यार से सवाल बस इतना रहेगा कि जब आप नेक्स्ट जेनरेशन को देखते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, कौन सी एक ऐसी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा उम्मीद देती है, और कौन सी एक ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि ये इस चीज को बेहतर करने की जरूरत है या इसके पुराने तरीकों को वापस से लाने की कोशिश करनी चाहिए?
1: जी, इनका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है, लेकिन सोच बहुत छोटी रह जाती है। उनका क्या है कि रिजल्ट चाहते हैं कि दो मिनट में मिल जाए। कुछ चीजों में समय बिताना बहुत जरूरी है। हम तो यही चाहते हैं कि पुराने जो लोग थे वो समय देते थे, आज के बच्चों के पास समय नहीं है। और अगर ज्यादा से ज्यादा वो अपने मोबाइल पे ही रहते हैं, जो ठीक है आपको नॉलेज मिल रही है, लेकिन आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो उससे और भी बेहतर होगा।
0: पक्का लास्ट क्वेश्चन है ना, वुड बी, आपको जब आज स्ट्रेस होता है या बर्नआउट होता है, आप क्या करते हैं? What is your way of unwinding?
1: I think you have to plan your head. मैं स्ट्रेस लेता ही नहीं।

0: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi, fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
1: And I hope that helps the people who are listening to us or is initiative ke liye hamari taraf se aapko bahut bahut badhai.
2: Shukriya, thank you very much.
3: और दोस्तों इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के उस पार सुनेंगे भारत से आने वाली एक ऐसी खबर जहां पर सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के भरोसे और बलबूते पर एक महिला ने अपनी पूरी जिंदगी को दोबारा खड़ा किया. फैसल फरीद की रिपोर्ट रहेगी. उससे पहले मेरे पास दीवा भारद्वाज का एक संदेश है कि हेलो वृषाली जी, माय मॉम्स फेवरेट क्रिकेटर इज कपिल देव. माय मॉम्स टू दीवा, मतलब जब उन्हें पता चला था कि मैं कपिल जी से बातचीत करने वाली हूँ, वो इतनी एक्साइटेड थी कि मुझे उनसे कहना पड़ा था प्लीज थोड़ा सा रिलैक्स करें. तो मदर्स आर स्पेशल, ऑफ कोर्स दे आर स्पेशल एंड विच इज़ वाई दे आर द बिगेस्ट इंस्पिरेशनल सोर्स. वो बहुत बड़ी प्रेरणा की स्रोत होती हैं क्योंकि आपकी माँ, आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, आप एहसास करते हैं कि एक्चुअली उन्होंने आपके लिए चीज़ों को कितना नॉर्मलाइज किया होता है, कितना सामान्य किया होता है, जबकि उन्होंने अपने स्तर पर कितनी सारी चीज़ों को संभाला होता है जो कई बार कितनी ओवरवेलमिंग रही होंगी, कितने दबाव रहे होंगे, पर उन्होंने कभी आप तक वो आने नहीं दिए. तो माएँ तो हमेशा खास होती हैं और इंस्पिरेशन का एक बड़ा सोर्स होती हैं. आपके लिए इंस्पिरेशन का क्या सोर्स है, कौन है, बताइए मुझे 04397997667 पर. फैजल फरीद की इस खबर के साथ लौटती हूँ एक छोटे से अंतराल के बाद. बने रहिएगा SBS हिंदी पर.
4: ¿Cómo recuerdas tus mundiales? Todos los que aún no ganamos uno, vivimos en el fantástico y terrible viaje del hubiera. Quizá el fútbol nunca se trató de ganar, sino de soñarlo juntos, entre rituales y promesas, y así cambiar la historia. Un Árbol Original Podcast, lleno de fútbol, memoria e imaginación. Narrado por Diego Luna. Escucha ahora en árbol.com/cambiar.
5: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo Internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
6: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है SBS हिंदी पर. आप सुन रहे हैं वृषाली को और हमने कार्यक्रम के शुरू में चर्चा की थी कि शार्क अटैक से बचने वाले सैम नाई किस तरीके से अपने संस्कृति से जुड़ करके वापस से खुद को खड़ा कर रहे हैं. और अब हम चर्चा कर रहे हैं कोयम्बटूर की राधिका जे ए के बारे में, क्योंकि ब्रिटल बोन डिजीज से जूझते हुए उन्होंने पुराने अखबारों से 3,000 से अधिक गुड़ियां बनाई जो अब भारत समेत कई देशों में एक्सपोर्ट हो रही हैं. तो क्या है ये कहानियां, ये सुनते हैं फैसल फरीद की इस रिपोर्ट में.
7: चौबीस वर्षीय राधिका जे ए कोयम्बटूर की रहने वाली हैं और अपनी गुड़ियों में जीवंत रंग भरने में लगी रहे. उनकी गुड़ियां असाधारण हैं. वे पुराने अखबारों से बेहद खूबसूरती से बनाई जाती हैं और उन पर बिना चेहरे वाला मास्क होता है. ये गुड़िया बनाना एक लंबी प्रक्रिया है. राधिका एक गुड़िया बनाने के लिए केवल 2 घंटे ही बैठ सकती हैं क्योंकि उन्हें 6 साल की उम्र में ही ब्रिटल बोन डिजीज हो गया था और उन्हें नियमित स्कूल छोड़ना पड़ा. बार बार फ्रैक्चर, कई सर्जरी और गंभीर

0: स्पंडलाइटिस भी उनके हौसले को नहीं तोड़ सके। राधिका ने जीवन की बाधाओं को हराकर पिछले 5 वर्षों में 3,000 से अधिक गुड़ियां बनाई हैं। पहला बड़ा मोड़ तब आया जब 10 साल की उम्र में चार दीवारी के भीतर लॉकडाउन जैसी जिंदगी और अकेलेपन के कारण वो अवसाद से गुजरी। उन्होंने डॉक्टर की मदद ली, जिन्होंने उन्हें वही करने की सलाह दी जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था। ड्राइंग शुरू करने के बाद उन्हें बेहतर महसूस होने लगा। 2016 में उन्होंने एक वॉल हैंगिंग का वीडियो देखा, जिसके लिए उन्होंने बुनियादी सामान खरीदकर अपनी पहली वॉल हैंगिंग बनाई। जल्द ही लोगों ने उनके कमरे की दीवारों पर उनका काम देखा तो पड़ोसी पूछताछ करने लगे। उन्होंने वॉल हैंगिंग 100 रुपए में बेचना शुरू किया और आज वही सिलसिला जारी है। 2 साल बाद साल 2018 में उनके भाई राजमोहन के दोस्त ने उन्हें एक वीडियो ट्यूटोरियल दिखाकर गुड़िया बनाने के लिए कहा। वो उत्साहित नहीं थी, लेकिन भाई राजमोहन के जोर देने पर उन्होंने 2 दिनों में काम पूरा कर लिया। आगे प्रोत्साहन मिलने पर उन्होंने अलग अलग परिधानों वाली 10 और गुड़ियों के साथ प्रयोग किया। उनकी किस्मत तब बदली जब उन्होंने इन गुड़िया को एक ऐसे एक्सपो में प्रदर्शित करने का फैसला किया जो कला को बढ़ावा देता था। अगले 10 दिनों में उन्होंने 20 से अधिक गुड़िया प्रति गुड़िया 100 रुपए की मामूली कीमत पर बेच दी। 2018 के अंत तक राधिका और उनके भाई राजमोहन ने अपनी गुड़ियों को प्रमोट और बेचने के लिए सोशल मीडिया अकाउंट बनाने का फैसला। राधिका को सिर्फ तमिल भाषा आती है, हिंदी और इंग्लिश नहीं आती। उनके भाई राजमोहन के माध्यम से उनसे बात हुई। राजमोहन ने इस अनोखी डॉल्स की दुनिया के बारे में बताया।
1: तो मायसेल्फ राजमोहन, तो वी आर फ्रॉम कोयंबटूर तमिलनाडु एंड माय सिस्टर नेम इज राधिका। शी इज स्पेशलाइज्ड इन मेकिंग न्यूज़पेपर डॉल्स एंड व्हेन शी वाज इन अर्लियर डेज सिंस व्हेन शी वाज इन चाइल्डहुड, सो हर लाइफ वाज इन अ नॉर्मल स्टेज, नॉर्मल वे ऑफ लाइफ। आफ्टर टिल एज ऑफ 5 शी वाज इन अ नॉर्मल कंडीशन ओनली। आफ्टर दैट she met with an, a small fracture in one leg and it got fractured. So then due to the continuous medical, after some surgeries, we get to know that her bone have like brittle bone kind of, so easily get a fracture if it hit anywhere lightly, slightly. So that is the major issue of her. So due to that, so she was bedridden and then she was in home only. She was not able to go to school or in, outside. After UKG, so she was in home only till the age of 15 years old. She was in home only. My parents, we are in a lower middle class family. In that time, we are not able to accommodate any tuition teachers or anything. So to run our daily regular requirements is more itself. It's very difficult. So in that time, my parents' ultimate goal is to make her health condition better and take care of her condition, and they want to make her normal. So in that way it was spent. So when she was in 15 years old, in that time I completed my college and I was started working. So in that time only I get to realize that a person sitting inside the home for last 10 to 15 years spending time inside, like now we are experience in the corona COVID lockdown period, even 1 or 2 months we are blocked inside the home. So but in that time, so now we know that sitting inside the home for 2 months is big challenge for us. But she was in lockdown for 15 years. So after that, so we started how to bring her talent or how to make her educated, like in that kind of process. Her hobby is to used to watch TV and used to make some small crafts and small painting works, drawing. She was interested in drawing, painting and everything. So in that way, we have given some some references and ideas. So she started making this newspaper craft. So in that time, it was trend that we have to reduce the waste and we have to reuse the waste in kind. In that terms, we started using newspapers what we have in home, which is very which is not useful for the use. After some time, she was initially started with making hanging using newspaper. So one of our neighbor came and they asked about the dirt. Then it was converted into sale and they bought it. And then with reference to that customer, we got 20+ orders. So in that way, it slowly started. And then we have to broaden portfolio. So for that, we try to go for some new alternative options. Like in that way, we find out that new